0: रॉयल थाली स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट

0: सच कहे जो होंगे।
1: चुल्ले ते पकती रोटी सच है,
2: मिट्टी चुगदी फसल सच है,
1: गुरु दी पानी सच है, सतगुर प्यारे सच्चे दी बाह फड़दे होंगे ने।

0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: पंजाब ते अमीर विरसे दी पुक्कल चो यादां दी संतूरी सफर दा हम सफर सांझा विरसा
2: गीत संगीत देश दुनिया दिया ताजा तरीन जानकारियां नाल लबरेज महकां दी सौगात वंडदा सांझा विरसा
1: सोमवार तो शुक्रवार 5:30 AM ते सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
3: बिजनेस दे प्रचार ते प्रसार लई संपर्क करो
2: सांझा विरसा दी टीम नू 647-835-5294
4: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहिबा वे चित दे महावाक अनुसार सारे ही नगर निवासियां नू बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

0: 7997877 sofastudio.ca। थैंक यू जी।
1: पाजी अज करे तंदूरी बनाओ, पर जो स्वाद तंदूरी बॉयज दे आना वो करे नहीं बन पाना।
2: हाय गाइस, एंजॉय करो तंदूरी बॉयज, वेज नॉन वेज स्वाद ले तंदूरी खाने ले पहुंचो तंदूरी बॉयज।
1: सांझा विरसा रेडियो दा रेफरेंस देन ते पाओ 10% डिस्काउंट। पार्टी जागो अते वेडिंग ले आज ही कैटरिंग बुक करो 9059562111 9054519200। सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशंस।
3: सांझा विरसा मीडिया ले आए ने सेकंड एनुअल पिकनिक
4: संडे 23 अगस्त 11 AM टू 4 PM एट बल्ले बल्ले फार्म्स।
3: अनलिमिटेड फन, मस्ती ते अपने आंदा होएगा साथ। भंगड़ा, गिद्दा, गेम्स, फूड स्टॉल्स, मेहंदी, सब कुछ रीजनेबल रेट्स ते।
4: तुसी अपनी डिशेस भी बना के ले आ सकते हो। पूरा पिकनिक वाला माहौल, पंजाब वालिया वाइब्स। आ जाओ फिर 23 अगस्त दिन एतवार सवेरे 11 बजे एट बल्ले बल्ले फार्म्स, 13219 ट्रिंकोजी रोड, कैलेडन।
3: जानकारी जा स्पॉन्सरशिप ले हरजीत जजुआ नु कॉल करो 647-835-5994।
5: सांझा विरसा प्रोग्राम सुनने वाले सारे श्रोतियां नु प्यार भरी सत श्री अकाल। तुसी सांझा विरसा प्रोग्राम दे विच कोई भी तुसी अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है, तुसी अपने बिजनेस नु प्रमोट करना, ते तुसी साडी टीम नाल संपर्क कर सकदे हो 647-835-5994 647-835-5994 दे उपर तुसी संपर्क कर सकदे हो।

0: इस साल तो इंश्योरेंस बहुत महंगी होगी। घर ते ऑटो दी इंश्योरेंस दी किश्तां ने सारा बजट हिलाता।
1: ओ जी अमनदीप कौर इंश्योरेंस एडवाइजर दे हुंदिया कोई फिकर नहीं, ऐ देन के बेस्ट रेट्स इन द मार्केट विद फुल कवरेज।
0: होम ऑटो कमर्शियल ट्रकिंग ते बिजनेस इंश्योरेंस ले कॉल करो इंश्योरेंस एडवाइजर अमनदीप कौर होरानो एट 416-618-2761 416-618-2761।
2: नाले चोपड़ियां नाले दो दो।
3: आहो जी मेनू भी पता, नाले ग्रोसरी नाले वधिया खाना, यानी दाना मंडी। दाना मंडी जिते हर तरह दी इंडियन ग्रोसरी, दाला मसाले पिकल्स चौल चाह पत्ती फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स
4: डेयरी प्रोडक्ट्स स्नैक्स फ्रेश चिकन बीफ गोट मीट सब कुछ मिलूगा। इना दे रेस्टोरेंट विच तुसी परांठे चना भटूरा वेज थाली वेज बिरयानी बटर चिकन विद नान दा स्वाद लो।
3: एक बार आओगे बार बार आओगे।
4: अनबीटेबल प्राइजेस सेल ऑल टाइम। दाना मंडी 1729 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन क्वीन एंड ब्रैमले।
3: कॉल गगन और गुरिंदर एट 905-286-9257।
5: बिल्कुल जी स्वागत है फिर तो थोड़ा। ते नाल दी नाल कुमारी आंटी जी दा मैसेज आया, आई सेव योर नंबर अंडर हरजीत जंजुआ। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच, दिलों सत्कार। 8520 तो भी भाई दा मैसेज है, गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल दा। ते नाल दी नाल बलदेव बराड़ साहब की कहंदे, गुड मॉर्निंग भाई जी, तेरे नाल तेरे नाम दिल तेरा ना कहंदे दिल दे डट ते डर्क है, क्या बात है। थैंक यू भाजी, थैंक यू सो मच, लव यू। सुना भाजी गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल थोनों भी। बिल्कुल हाँ आही है, बस यही लोग अपना। तो परमिंदर जी भी जुड़े हुए, परमिंदर जी ने खबर भी आप कर ने तो उस पहला 7583। हाँ जी भाजी सत श्री अकाल जी, जी आनू स्वागत है।
6: हाँ जी मैं गाना दसना सी जी, नरेंद्र बीबा ते करनैल करदा जी।
5: केड़ा जी?
6: पंज भादो नू।
5: नरेंद्र बीबा ते
6: करनैल दिल।
5: करनैल दिल, करनैल दिल कहा तुसी?
6: हाँ जी हाँ जी।
5: ओके मैं करदा देखदा। थैंक यू भाजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 7015 हाँ जी वासी साहब नंगा, सत श्री अकाल जी। आनू
7: सत श्री अकाल परमिंदर जी, सत श्री अकाल
5: जी। आनू
7: बड़ा
5: छतरा जा
7: बन
5: गई गल।
7: ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦੋ, ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਥੋੜੀਆਂ, ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਬੇਫਿਕਰ ਡਟੇ ਰਹੋ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ
5: ਆ
7: ਗਏ।
5: ਕੌਣ?
7: ਤੁਹਾਡਾ ਆੜੀ
5: ਕੌਣ ਵਾਲਾ? ਹਾਂਜੀ
7: ਖੋਡੇ ਵਾਲੇ, ਖੋਡੇ ਵਾਲੇ
5: ਉਹ ਕੌਣ?
7: ਖੋਡੇ ਵਾਲਾ ਆੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਦੇਵ।
5: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ?
7: ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ

0: याद है मेनू जदों मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट होया सी किन्नी परेशान हो गई सी मैं इंश्योरेंस नाल डील करना गड्डी पेंट कराना किन्ने झंझट थैंक्स कर दिया मैं स्पीडएक्स ऑटो कलिजन वालियां दा जिन्ना ने मेरी इंश्योरेंस नाल खुद डील किया रेंटल कार भी दिती ते मेरी कार नू बिल्कुल नवी वर्गी बना दिता ते तुसी भी पहुंचो स्पीडएक्स ऑटो कलिजन 181 रदरफोर्ड रोड साउथ यूनिट 11 ते या कॉल करो 416-277-9221 416-277-9221
1: यार लास्ट वीकेंड असी तवा किचन तो केटरिंग ऑर्डर कीता सी ऑनेस्टली बेस्ट डिसीजन सी हाँ ब्रो फूड वाज अमेजिंग फ्रेश हॉट ते फुल टेस्ट वाला गेस्ट्स भी पूरे इंप्रेस हो गए सर्विस भी टॉप नॉच सी टाइम ते डिलीवरी प्रॉपर पैकिंग ते सब कुछ ऑर्गेनाइज सी मेन्यू भी बहुत फ्लेक्सिबल सी करीज रोटी राइस एवरीथिंग वाज परफेक्ट ऑनेस्टली असी ता हुण हर फंक्शन ले तवा किचन ही चूज करांगे Try Tawa Kitchen for the best catering in town. Fresh food, great service and unforgettable taste. Book your next event now. 50 Sunnyvale Gate, Brampton. 905-790-1699. 905-790-1699.
2: ਭੈਣ ਜੀ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਟੇਸਟ ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤੇ ਬਫੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ
3: ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਨਾ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਖਾਧੀ ਸੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਫੂਡ ਇੰਨਾ ਟੇਸਟੀ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਫੂਡ ਇੰਨਾ ਫੂਡ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਥੱਕ ਗਈ ਪਰ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ
4: ਤਵਾ ਕਿਚਨ 50 ਸਨੀਵੇਲ ਗੇਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਾਉਂਟਨੈਸ਼ ਐਂਡ ਬੋਵੇਰ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.tawakitchen.ca 905-790-1699 905-790-1699
5: पापा सुनते क्यों नहीं चॉकलेट लेनी है
6: अजी सुनते हो कहाँ गुम हो
7: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए पता नहीं मीटिंग थी हेलो हेलो हेलो
8: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता बम टू बम ट्रैफिक एंड बम टू बम कॉल्स ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 टू 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 टू 1 रेडियो आवाज
9: कि तुसी भी इन्वेस्टमेंट दे इस दौर च प्रॉपर्टी च इन्वेस्ट करना चाहते हो कि तुसी भी प्रॉफिटेबल आउटकम ले प्रॉपर्टी लब रहे हो फिर फेयर डील रियल्टी रिप्रेजेंट्स आउटस्टैंडिंग फार्म हाउस 28 एकर लैंड विद टू रोड फ्रंटेजेस डबल कार गराज ग्रीन हाउस एंड वर्कशॉप यही नहीं 407-418 हाईवे तो सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी ते फॉर बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स कॉल द बेस्ट टीम फेयर डील रियल्टी ब्रोकर ऑफ रैकेट हरदीप पंदेर एंड 905-671-2000
10: You are listening to your favorite radio show, Radio Awaz, The Voice, Zindabad, Zindabad. For advertising, please call 416-518-3200.
11: यार आजकल इकोनॉमी बहुत टफ चल रही है ट्रकिंग इंडस्ट्री स्लो है बिल्डर क्लोजिंग्स रुक रहे हैं कई बिजनेसेस लॉस विच जा रहे हैं जिथे सेविंग्स तक खत्म होने लग जाती हैं पर कनाडा विच फाइनेंशियल स्ट्रेस के लिए लीगल ऑप्शंस अवेलेबल ने थ्रू द इनसॉल्वेंसी प्रोसेस तुहानू डेट नू प्रॉपरली असैस करन मैनेज करन ते सिचुएशन अकॉर्डिंग रिलीफ ऑप्शन समझाण विच हेल्प करदे ने इस प्रोसेस नाल तुसी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन नू कंट्रोल विच ले आ सकदे हो ते अगला सही स्टेप प्लान कर सकदे हो ज्यादा इन्फॉर्मेशन लई अज ही कॉल करो 416-518-3200 416-518-3200
12: ਘਰ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਟਰਸ ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਲਟੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣੋਗੇ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਸ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਕਸਟਮ ਕਾਰਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਫ੍ਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਈ ਸੁਖਮਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-816-8401 416-816-8401
13: ड्राइव कर रहे हो शो नो एंजॉय कर रहे हो कुछ भूल रहे हो
14: ड्राइविंग लाइसेंस
13: नो
14: पुलिस ऑफिसर
13: नो नो
14: ट्रैफिक लाइसेंस
13: नो
14: देन
15: डायमंड इंश्योरेंस दे पवन कौर गिल दा ए मैसेज मोस्ट ऑफ इंटोरियंस इग्नोर कर रहे हैं अपनी ऑटो इंश्योरेंस रिन्यूअल या अपने रेट नो चेक करने लई आज ही कॉल करो 30 तो वध कंपनीज नाल काम कर रहे पवन कौर गिल 3 मिनट दे विच 300 तो लेके 1500 तक साल दी इंश्योरेंस कट सकदी है ऑटो होम और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज दी 647-325-9900 647-325-9100 पवन कौर गिल फ्रॉम डायमंड इंश्योरेंस
16: जिंदगी एक सफर है सुहाना
17: 6'2" लंबे दारा सिंह जी ने अपने जीवन काल में करीब 500 मैच खेले उसमें से एक भी मैच नहीं हारे
18: इसी तरह तवा किचन का दारा सिंह पराठा भी हार नहीं मान रहा, चैंपियन इन पराठा मार्केट,
0: जो कि मिल रहा है 2410 एट तवा किचन, 30 रैम्बलर ड्राइव, ब्रैम्पटन, क्लोज टू कैनेडी एंड स्टील्स, 9054512600, 905-455-2600।
19: जे टाइम दी सेविंग करना चाहते हो तो पहुंचो ऑल ट्रक ल्यूब एंड वॉश लिमिटेड, जिथे तुसी ट्रक वॉश, ट्रक ऑयल चेंज ते रिपेयर एक ही रूफ थले करा सकते हो। इत्थे बहुत सारे स्पेशल ऑफर्स चल रहे ने, जिवें ऑयल चेंज नाल ट्रक वॉश सिर्फ $45, तुसी कैट दी बैटरियां विद इंस्टॉलेशन चेंज करा सकते हो एट $850, सारियां रियर ड्रम and rear brake change at $750, and AC recharge is at just $180. So reach out to them, call at 905-452-9955. Inada address is 71 Stafford Drive, Brampton. They right now a hiring bhi kar rahe ne, je tanu truck mechanic da koi experience hai, you can call them, their number is 905-452-9955.
20: F-150 Ford ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਟਰੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। F-150 ਜਾਂ ਮਸਟੈਂਗ ਜਾਂ ਲਿੰਕਨ ਜਾਂ ਫੋਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਨਿਲ ਚੋਪੜਾ, ਰੋਹਨ ਚੋਪੜਾ, ਚੋਪੜਾ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਚੋਪੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। 42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੌਪ ਸੇਲ ਇਨ ਓਨਟਾਰੀਓ, ਕਾਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਿਲਟਨ ਫੋਰਡ ਤੋਂ ਚੋਪੜਾ। ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਟਨ ਫੋਰਡ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-302-4141।
18: ਮੰਮੀ ਮੰਮੀ ਭੂਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬਰਗਰ।
17: 6'2" लंबे दारा सिंह जी ने अपने जीवन काल में करीब 500 मैच खेले, उसमें से एक भी मैच नहीं हारे।
18: इसी तरह तवा किचन का दारा सिंह पराठा भी हार नहीं मान रहा, चैंपियन इन पराठा मार्केट,
0: जो कि मिल रहा है 2410 एट तवा किचन, 30 रैम्बलर ड्राइव, ब्रैम्पटन, क्लोज टू कैनेडी एंड स्टील्स, 905-451-2600, 905-455-2600।

0: Poncho 30 Rambler Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 905-451-2600.
1: Hello, bro. Kithe hai tu?
2: Main client nu milan ja rahe Soch rahe si Tim Hortons ch baith jaiye.
1: Oh, yaar. Ye ta old school ho gaya. Hun ta client meetings classy honiyan chahidiyan ne. Nazara restaurant leke jao unnanu. Private booths ne full privacy mil diye. Free Wi-Fi te luxury ambience. Business meeting bhi set ho jandi hai. Te khana bhi bahut vadhiya.
2: ओहो, ये तो प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग हो गई।
1: नजारा रेस्टोरेंट 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी कोई कॉल करो 905-451-2600 905-451-2600
3: रियल एस्टेट दी दुनिया भी चाओ अपने सुपने अनु सच कर बखाओ फेयर डील रियलिटी इंक ब्रोकरेज नाल हाथ मिलाओ
4: रियल एस्टेट दिया परीकियां सिखो ते कंपनी वलो क्लाइंट्स लीड्स भी पाओ
3: फेयर डील रियलिटी इंक ब्रोकरेज नमी एजेंट हायर कर रहे ने
4: आज ही कॉल करो फेयर डील दे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड हरदीप पंदेर नु
3: 905-671-2000
4: फेयर डील नाल हाथ मिलाओ अपने सुपने अनु सच कर दिखाओ

0: माइग्रेन स्ट्रेस नींद नहीं आती बहुत प्रॉब्लम है तो ना शिरोधारा एक ट्रीटमेंट आ जिसे यह तेल मत्थे ते पाउंदे आ जिहड़ी थर्ड आई हुंदी आ विचाली अख हुंदी आ उहदे ते पाउंदे ने ते मत्थे दे विचकार ते थोड़ी जिहड़ी नींद दा सुभाव बदल जांदा बेचैनी रहिंदी आ तुसीं मालिश जरूर करा के देखो तुहानूं सुकून मिलेगा सिर्फ $55 खर्च के ब्रिजी नाल 2.5 साल तो उपर दा टाइम होगा ब्रिजी कितना टाइम हो गया आपको हमारे साथ बोलते हुए
1: फोर्थ ईयर Yeah.
0: अरे बाबा लाइफ ऐसे निकल जाता है पता ही नहीं लगता अच्छा चौथा साल हो गया मैं 2.5 साल लेके जाना फोर्थ ईयर हो गया ब्रिजी मेरे नाल आउंदे आ ते तकरीबन 1000 प्लस जिहड़े फैमिलीज ने उन्हां दी मालिश कर चुके हैगा ए अपने स्पेशल तेल ने इन्हां दे उन्हां तेलां दे नाल तुहाडे शरीर नूं मन नूं सुकून दूगा 55 खर्चने ने मेल और फीमेल यानी हसबैंड वाइफ दोनों जा सकते हैं लेडी जिहड़ी है जिहड़ियां इन्हां दीआं मालिश करन वालीआं लेडीज़ दे लई टेक केयर करदीआं ने ब्रिजी बंदिआं दे टेक केयर करदा नंबर इको आ माल्टन गुरद्वारे दे कोल इको लोकेशन है पुराने बंदिआं चों ब्रिजी ब्रिजी नंबर बोलो
1: 647-619-1369
0: वीकेंड के स्लॉट्स कितने पड़े आपके पास
1: लिमिटेड स्लॉट्स आर अवेलेबल ऑन वीकेंड्स
0: हां तुसी ये क्योंकि आप अपने हत्थां नाल काम करदे हत्थी किरत करदे ने ते दसा नौहां दी किरत खांदे ने लिमिटेड स्लॉट हुंदे ने तुसी इन्हां कोल पहुंचना हैगा और ये जानदे ने थोड़ी बॉडी च सोजिश किथे आ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਜੋੜ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਆ 647-619-1369 ਬ੍ਰਿਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ

0: Friday, September 18, 7 PM at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत दी थी, उम्मीद कर रहा इस बार भी तुसी आशीर्वाद दोगे.
2: मैं आ जा तो मैं नाल नचिए नचिए बाहच बाहपा मैं आ जा तो मैं नाल नचिए.
0: For tickets visit Ticketmaster. For information call Singh Harjeet at 647-448-1000.

0: फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तो सीधे अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: डेल मुंडी रियल स्टेट दा सितारा लोकां दा विश्वास डेल मुंडी नवे प्रोजेक्ट दा माहिर डेल मुंडी डील दवाउण दे विच होर वाधा करदा डेल मुंडी कम्युनिटी विच लंबे समय तो नाम बना चुका डेल मुंडी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दीयां बरीकियां नूं समझण वाला डेल मुंडी अगली प्रॉपर्टी तुहाडी एक्सपर्ट एडवाइजर रियल्टर डेल मुंडी 416-313-1313 डेल मुंडी 416-313-1313
2: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश खरीदिए जीटीए में कहीं और ना मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन 905-458-6808
3: यार इना इंश्योरेंसा ने ते धुआं कढ़ाता वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा
4: टॉप फाइनेंशियल इंक तो जो अपनिया बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने
5: क्रिटिकल मॉर्गेज आरईएसपी आरआरएसपी विजिटर इंश्योरेंस सुपरवीजा स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स जे तुहाडे कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने ता तुहानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे
4: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 647-300-3100
5: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन
6: आज खुश तो बात हो गया
7: ओ ता होना ही है जदों ढिल्लों वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी आईपीटीवी बॉक्स होवे ऐ नकदा बनदा ही है
6: आज मेरे पास बिल्डिंग है प्रॉपर्टी है बैंक बैलेंस है बंगला है गाड़ी
7: ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡਸ ਬੈਸਟ ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਆਈਪੀਟੀਵੀ ਬਾਕਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ
8: ਚੱਲ ਕੇ ਰਹੇ ਆ ਪਰ
7: ਓ ਭਾਜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ 40 ਇਅਰਸ ਇਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ
9: ਡਾਮ ਕੋ ਪਕੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ
7: ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ ਐਬਨੀਜ਼ਰ ਐਂਡ ਗੋਰ ਰੋਡ 905-204-1313 ਜਾਂ ਢਿੱਲੋਂਵੀਡੀਓ.com ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ
10: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station, AM.

0: 530. CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: Hello. Kataria Tours and Travel?
2: Hanji, Kataria Tours and Travel.
1: India diyan tickets chahidiyan si.
2: Oh, India ki, tusi jitho marzi diyan tickets lelo. India kithe jana?
1: Char tickets Delhi diyan, te do Amritsar diyan. Mil jaangiyan?
2: Mil jaangiyan. Bilkul mil jaangiyan. Delhi, Mumbai, Amritsar. Eh ho ta saadi speciality hai. Bas dasso ki tickets kado diyan chahidiyan ne. Te haan, special tour packages te honeymoon packages vi saade kol available ne.
1: Parosiman service te sab to badhiya rates le ikko ikna. Kataria Tours and Travel. Booking le aaj hi call karo 905-678-1200 Kataria Tours and Travel
3: 32-55-80
4: 98 गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
3: ओ काउंटिंग नहीं ए ते 32-55-80 ते 98 इंच दे टीवी ने
5: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते 32 तो 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
4: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828
0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton.

0: सिंगल पीस वॉशर उन्हें मिलेगा $1200 तो सिर्फ $599 का, सिंगल पीस ड्रायर चाहिए जी $1000 वाला सिर्फ $499 का। तो प्रोडक्ट कोई भी लवो, 32 इंच तो लाके 98 इंच तक ऑल टीवीज अवेलेबल है। लॉन्ड्री च टॉप लोड वाशर एंड ड्रायर, फ्रंट लोड वाशर एंड ड्रायर, स्टैकेबल वाशर एंड ड्रायर, कॉम्पैक्ट वाशर एंड ड्रायर, फिट इन अ क्लोजेट वाशर एंड ड्रायर, ऑल काइंड ऑफ वाशर ड्रायर तुहानू डिस्प्ले ते मिलणगे। सिलेक्ट करोगे, साडा ट्रेन स्टाफ तुहाडी हैल्प करेगा सिलेक्ट करन च किहड़ा मॉडल किहड़े फीचर्स दे नाल किहड़ी प्रोडक्ट तुहानू चाहीदी है डिस्काउंटेड प्राइस ते। ते फ्रिज स्टोव डिशवाशर 3 पीस किचन बंडल लवोगे ते $2000 तक दी सेविंग है। बिल्ट इन किचन लवोगे ते बिल्ट इन कुकटॉप, बिल्ट इन वाल ओवन, बिल्ट इन माइक्रोवेव, बिल्ट इन डिशवाशर ते बिल्ट इन काउंटर डेप फ्रिज, एदे च 40% दी सेविंग है जिहड़ी $6000 तो ज्यादा बन जाती है, क्योंकि $12000 वाला बिल्ट इन किचन सिर्फ $6900 का दिता जा रहा। सो मिस ना करना, बाय मोर सेव मोर इवेंट अंटिल संडे, अज फ्राइडे कल सैटरडे ते परसों संडे तक, तुहानू सुबह 11 बजे तो शाम 8 बजे तक बोवेड एंड चंकूजी वाली लोकेशन ते एक्स्ट्रा सेविंग्स कराएगा। 9054502828 साडा नंबर है जी, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी ऑन बोवेड आना है। ब्रैम्पटन अपलाइंसिस डॉट कॉम साडी वेबसाइट है। 9054502828 905-450-2828 जी।
1: समान कोई भी लवो ब्रैम्पटन टीवी अपलाइंस तो 6 महीने चवानी देने की लोड़ नहीं, कोई ब्याज नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, 6 महीने थोड़े थोड़े करके दे रहे कट्ठे दे रहे, मर्जी तुहाडी है। नंबर एक ही है 905-450-2828। थैंक यू सर,
0: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।
1: पेट्रोल की प्राइस अज अद्धी रात तो बदलनी नहीं घटनी नहीं, रही गल मंडिया के भाव की, यह मंडिया के भाव थोड़े लिए जनक ज्वेलर के सहयोग ना दस दें। टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज, डाओ, नैसडैक, क्रूड ऑयल, डॉलर, सोना सारे का सारा उपर जा रहा है। रशिया ने एक जहाज भेजा से कोविड वेले दवाइया दवाइया दे के, वह जरा जहाज जो उतरिया उदो हालात होर से जो चढ़ना से, जैसे ही कैनेडा ने फ्लाइटा कैंसल करती रशिया लिए, वह जहाज उदों का इतें ही खड़ा। मैं कहा 21-22 की गल है। और तुहानू लैके चलांगे असी ग्रैंड फर्नीचर ते, जिथे बड़ी जबरदस्त सेल आई है, स्टे ट्यून, गए ते आए जी।
2: राइटर साहब देखो, मेरा डॉक्टरी पेशा तो बहुत वधिया चल रहा है
3: जी जी,
2: पर मैं चाहनी हां कि मैं हुण एक फिल्म भी बनावा, सो तुसी मैनू कोई टाइटल सजेस्ट करो।
3: बड़े टाइटल ने जी, देखो, कभी खांसी कभी जुकाम, कहो ना बुखार है, टीबी नंबर 1, हम ब्लड दे चुके सनम, रहना है अब हॉस्पिटल में
2: है?
3: बचना है मरीजों, दिल तो कमजोर है, एक हसीना दो किडनी,
4: फिट्टे मुँह तेरे।
5: लो जी सियाने कहंदे आ जी, काम बेस्ट कराउणा है ते काम करन वाले बंदे बेस्ट होने चाहिए। हुण जे तुसी घर दा डक साफ कराउणा सिर्फ $99 तो कर देंगे, कारपेट, सोफा, कार, ट्रक, शैंपू कराउणा तां वी कॉल मारो। हुण मेरे कहण दे ना रहो, बेस्ट नू पहला कॉल करके टेस्ट कर लो। नंबर मैं दस दिना, 416-277-4616, अंग्रेजी च 416-277-4616 है, खड़काओ घंटी।
6: I am Dev Tatla and you are not।
1: कैनेडा अमेरिका टैरिफ समझौता अंत पड़ा ते है, अज तक होण दे चांसेस 100% ने। सुप्रीम कोर्ट वालों मानहानी मामले च सुखबीर बादल दी पटीशन खारिज कर दिती। ओकवल विच हाईवे 403 ते हादसा होया और एक औरत दी विचारी दी मौत हो गई, सैड सैड सैड। पुलिस ने गड्डी विच खुली शराब मिलने तों बाद एक डंप ट्रक नूं जब्त कर लिया, अपने इत्थे लोकल कैनेडन दी गल है, नाले ट्रक दे विचों दारू दे खाली डब्बे निकले। ईरान दे फौजी मुखी ने नवे खतरियां दा कट्टर जवाब देण दी वार्निंग दिती है। यमन ते समालिया तो समुद्री डाकुआ ने 22 भारतीयों नूं लिजा के किडनैप कर लिया। ए ऑयल टैंकर सी जिथे अगवा कीता है। RCMP ने 2 हफ्तियां तो भी घट समय विच कल्टस झील दे दूजी घातक डुबण दी पुष्टि कीती है। ऑल राइट, अपने नाल आ चुके ने साडे वीर सुखवीर। सुखवीर जी, वेलकम टू द शो सर।
4: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਭਾਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਮ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले फॉर जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स। हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड इटोबिको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किसतों करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca।
4: Don't blame your luck for all the unhappiness in your life. You just need the support of a person who can give you the right guidance. Meet the renowned psychic fortune teller Pandit Nanda Ji today, who is the expert of palm reading, face reading and horoscopes. Solution is available for all the problems related to family, health, drinking, depression, financial problems and bad luck. 100% removal of black magic, evil spirits and spells. All religions welcome. Located at Queen and Kennedy in Brampton. Call Pandit Nanda Ji 647-822-9607 647-822-9607।
5: मित्रां दे जंक्शन ते।
6: ओ केड़े जंक्शन ते?
7: इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते।
5: रात लगियां वह फुलाना रे।
7: भाई महफलां ते रोज ही लगदियां ने। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते आओ, ताजा स्वादला खाओ ते 100% दी कैपेसिटी वाले शानदार बैंकुएट हॉल विच अपनियां खुशियां दे जश्न मनाओ। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन करदे ने केटरिंग बिग और स्मॉल विद लाइव फूड ट्रक 11 AM to 6 PM। ऑल ड्रिंक्स 50% ऑफ। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते कॉल करो 647-429-4040। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन।
8: बिल्कुल जी, टिक्का जंक्शन दे उत्ते हर फ्राइडे लाइव म्यूजिक सुनो, बढ़िया खाना खाओ, पहुंचो रदरफोर्ड ते क्वीन दे कॉर्नर दे उत्ते। जुड़े हो वतन दूर दे नाल। और मैं पहला भी दस के गया कि एक 2 बेडरूम दी अपार्टमेंट ब्रैम्पटन दे इलाके च नवी, बिल्कुल नवी, और एक वाशरूम दे नाल 1100 कुछ स्क्वेयर फीट है। सिर्फ $4 लाख तुहानू मिल सकदी है। नंबर है 416-881-7070। तो किरण जी काफी जी। बहुत सारे फोन आ रहे ने जिहड़े कि आपां बोलिया कि जिहड़ा प्लाजा ब्रैम्पटन च बन जा रहा 2 साल तक बन के रेडी होना, तुसी सिर्फ 5% डाउन दे के ही उन्हों होल्ड करना। और जिहड़ा मर्जी बिजनेस खोलन लिए हाले अवेलेबल है, और कुछ कल भी साडे कोल 3-4 यूनिट बुक होए ने। बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने परिवारां दा ते शुभकामनावां उन्होंने बिजनेस लिए, व्यापार लिए। और 2 साल बाद इन्हां दी कीमत फिर बढ़ जानी है। और हाईवे 410 ते हाईवे 10 दे बिल्कुल नजदीक होवेगा, और क्योंकि बिल्कुल हाईवे उत्ते आ, उत्ते बहुत सारे घर भी बने हुए ने, होर भी बहुत आ रहे ने उधर नूं घर, सो काफी बिजी एरिया होवेगा। ते 17-18 एकड़ दे विच इहे बन के प्लाजा तैयार होना, तकरीबन 2 लाख स्केयर फीट दा प्लाजा होवेगा, जिथे तुसी कोई भी व्यापार अपना खोलन लई यूनिट होल्ड कर लो, जिन्हां चो भावें रेस्टोरेंट बनाउणा है, तुसी कोई ऑफिस बनाउणा, कोई मेडिकल दा बनाउणा, कोई फार्मेसी, कोई डेंटिस्ट, कोई ग्रोसरी स्टोर, किसी गल की है जी कि कोई भी व्यापार तुसी करना चाहुंदे हो ते वधिया एरिए च वधिया प्लाजे च होल्ड करना चाहुंदे हो, यूनिट अपना 2 साल च बन के तैयार होना, ते थोड़ियां थोड़ियां किस्तां च ही तुसी जिहड़ा 30% पैसे देने ने 2 साल दे विच, ते उस तो बाद मॉर्गेज लोन दा इंतजाम भी टीम साडी करवा के देवेगी। नंबर 416-881-7070। ते करण जी वीकेंड है, उम्मीद है कि इस वीकेंड दे उत्ते काफी जिहड़े परिवार है उत्थे आउणगे।
9: बिल्कुल जी बिल्कुल। और नाल दी नाल सुखी जी आपां दस दईए कि प्राइम इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी नाल जिहड़ा जी अर्ली चाइल्डहुड असिस्टेंट दा जिहड़ा प्रोग्राम जिहड़ा कि डे केयर दे विच साडे भैण भरा काम करदे, ओह कोर्स जिहड़ा है जी इहनां दे लॉन्च हो चुक्या। सैप्टेंबर इनटेक ए हुण जिहड़ा है जी लै रहे ने। सो तुसीं जिहड़ा है जी इहनां दे नाल गल्लबात करन दे लई नंबर 647 4991009 ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ PSW ਦਾ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ 24 ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 25 ਵੀਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਕੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 6474991009
8: ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਫੋਨ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਕਰੀਬਨ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ 4168817070। ਜੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਦੋ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਦੋ ਜਾਂ ਮਿਸ ਕਾਲ ਮਾਰ ਦੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਟਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਨੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 4168817070 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9057990999 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੀਕਐਂਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੀਕਐਂਡ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, 15 ਅਗਸਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਔਰ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਰਾਜਵੀਰ ਹੁਣੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਪੋਂਸਰ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।

0: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार?
1: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
0: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
1: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे, इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी। जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
2: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
1: 416-509-1509
2: और विजिट insuranceforyou.ca।
0: दोस्तों, देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो नो या चलो AM 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उन्हां नूं सुनण वास्ते जां देश परदेश नूं लाइव देखण वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नूं www.deshpardeshradio.com या www.deshpardeshtv.com। लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो, जे वाच करना चाहुंदे तां ओह ते क्लिक करो, जां फिर अपने IPTV बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सैक्शन क्लिक करो, ओहदे उत्ते जाके देश परदेश टीवी नूं क्लिक करो, ओहते तुसीं सुन भी सकदे हो, वेख भी सकदे हो 24/7।
3: लखां दिलां दी धड़कन द सुपरस्टार एमी वेयर। And Cellular Point present Amy Will live in Toronto. August at Great Canadian Casino Resort. Toronto Valio, ready hojo. Buy your tickets at ticketmaster.ca or call 647-964-8573.
0: चलो AM 530 तो तुसी सुन रहे हो अपना हरमन प्यारा रेडियो प्रोग्राम देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो। पिछले 30 वर्षों तो तुहाडे अंग संग देश प्रदेश हुण अपने शाम दे प्रोग्राम दे विच वाधा कर चुका। पहला तुसी सुनदे सी मंडे टू फ्राइडे 4-6, लेकिन हुण तुसी सुनदे हो 3-6 शामी, जाने के देश प्रदेश तुहाडे लई शाम नूं 3 घंटे पेश हुंदा है, ते नाल तुसी दुपहरे सिरे 1 तों लैके शाम दे 4 बजे तक देश प्रदेश नाल सांझ पाउंदे हो। देश प्रदेश रेडियो प्रोग्राम दे विच कोई भी अपने काम कार की एडवरटाइज करनी हो अफोर्डेबल पैकेज लई आज ही कॉल करो सम्राज सिद्धू होरां नूं 416-457-3381 416-457-3381 जां तेजिंदर सिंह सिद्धू दे नाल कॉल करो 416-725-2551 416-725-2551। देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो पिछले 30 वर्षों तों 7 डेज़ अ वीक तुहाडे अंग संग। चलो AM

मक्की होए खेत काली वाले ने कचरा स्वाद खेत ने कोई विकाय ने माना मुई मक्की होए खेत काली वाले ने कचरा स्वाद खेत ने करे विकाय ने नाले लै दूती मुझे तो फेर भी ना तुरी

0: ओवरऑल थाली स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट राजधानी स्वीट्स CA।
2: कोई भी कार वैन ट्रक का काम हो याद रखो रॉयल